हरियाली लगाएं। अब पता है जब हमारे घर में खूब सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो एक तो वो ठंडा रहता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में भी है, एक नीम का, एक आम का है और एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, देख कर ही बहुत सुकून मिलता है। भोर सुहानी शो में मैं पंकज आपके साथ हूँ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो ठंडे ठंडे गाने सुनाऊँ जिससे कि आपको थोड़ी सी ठंडक फील हो। सुबह के 5:33, अभी दिल्ली का मौसम जो है थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है, तो मतलब अभी आप बाहर घूम सकते हैं, अपना बढ़िया ताज़ी हवा ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इन गानों का मजा लीजिए। लेकिन फिल्म से लता जी की आवाज़ में ये रहा।

अरे हमारे स्टूडियो की अभी मैं विंडो से देख रहा हूँ तो एकदम है ना सनराइज हो रहा है, धीरे धीरे सूरज उग रहा है, तो बिल्कुल एकदम क्लियर सूरज दिख रहा है। इतना प्यारा व्यू लग रहा है इस स्टूडियो से, मैं क्या बताऊँ। इसलिए

मतलब मैं स्टूडियो से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि स्टूडियो से बाहर जाना मतलब मेरे लिए मानो गानों के समुंदर से बाहर निकल के वापस जाना हो, और मैं नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। खैर, आकाशवाणी की FM गोल्ड चैनल को मैं गाड़ी में सुनूंगा, फिर घर जाते ही रेडियो ऑन करके अपना फेवरेट चैनल सुनूंगा। अब क्योंकि भोर सुहानी शो का टाइम पूरा होने वाला है और अगले घंटे आप सुनेंगे नेक्स्ट शो अर्पण बबीता शर्मा के साथ, तो इन गानों के बाद आप सुबह 6 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सुबह 6:10 पर अर्पण शुरू होगा। तो मैं पंकज आपसे दोबारा जल्दी मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्ते।

0: ఇప్పుడు మీరు న్యూస్ వింటారు హిందీలో, ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ప్రసారం.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे. वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते. रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है. अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की. इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे.
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए.
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं. भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे. 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में

0: भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला ट्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid ul-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The CBI has arrested Giribala Singh in the Trisha Sharma death case. Giribala is Trisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन विल अंडरटेक अ थ्री डे विजिट टू कर्नाटका गोवा एंड केरलम बिगनिंग टुडे द वाइस प्रेसिडेंट विल अटेंड द ग्लोबल सेलिब्रेशन मार्किंग 45 ईयर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इन बेंगलुरु कर्नाटका टुडे लेटर इन द डे ही विल अटेंड द प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी बी डी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वापस आ गया हूँ, आपका दोस्त आरजे जेडी, और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गाने के साथ, जो है एड शीरन का ब्यूटीफुल पीपल।

नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट RJ JD। सुबह की चाय हो, ऑफिस का रश या घर के काम के बीच थोड़ा सा मी टाइम, हम हैं आपके साथ। हम हैं आपके साथ पॉजिटिव और दिल से बातों के साथ। आज हम बात करेंगे दुनिया में पीस मेंटेन करने वाले हीरोज की, नेचर की, हेल्थ की और उन फनी हैबिट्स की भी जो आजकल हम सबकी लाइफ में परमानेंट मेंबर बन चुकी है। तो मुस्कुराते हुए रिलैक्स्ड फील करिए और शो का एंजॉय करिए। अभी आ रहा है आपका बहुत लोगों का फेवरेट गाना माई हार्ट विल गोज ऑन फ्रॉम टाइटैनिक मूवी। कमर्शियल निकला।

0: दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस में कम दिखाई देते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स हैं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर पीस मेंटेन करने की ड्यूटी करते हैं। जी हाँ, अलग अलग कंट्रीज में जाकर पीस मेंटेन करने की ड्यूटी करती है, कभी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, कभी डेंजरस सिचुएशंस में, फिर भी फेस पर कामनेस। ये बहुत ही मतलब ग्रेट माना जाता है। और ऑनेस्टली पीस मेंटेन करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि घर में टीवी रिमोट को लेकर शांति मेंटेन नहीं होती कभी कभी। और ये लोग पूरी दुनिया में हारमोनी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इनमें मिलिट्री पर्सनल भी होते हैं, पुलिस भी और सिविलियंस भी। ये हम एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ पावर नहीं, पेशेंस भी होता है। कभी कभी एक सॉफ्ट वॉइस भी फाइट को रोक सकती है। तो आज एक स्मॉल सल्यूट उन सब लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, क्वालिटी, सेल्फलेसनेस और ब्यूटिफुल्ली। चलिए दोस्तों, अब वक्त है कुछ गानों का। हम सुनते हैं बोनी एम का डैडी कूल। हाँ, वो एक ज़माने का इतना पॉपुलर सॉन्ग हुआ करता था, एंड मैं अभी भी सुनता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं, ये कंटिन्यू होता रहता है। ये गाना ही ऐसा है, खुद सुनिए और जानिए।
1: She's crazy like a fool.

It's Monday morning, and even I belong to that category. For some, it's alarm clock, and for few people, it's actually using the जिम मेंबरशिप. हाँ भाई, क्योंकि हम जिम कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, बॉडी बना के लिए नहीं, बनाने के लिए नहीं, लेकिन हमने पैसे भरे हैं ना, इसलिए जाना पड़ता है कुछ लोगों को. खैर, सो एवरेस्ट टीचर्स अस वन ब्यूटिफुल थिंग. हाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कंसिस्टेंसी इज. स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्टडी. नाउअडेज़ एवरीवन वांट्स टू इंसिस्ट रिजल्ट्स. एवरीवन वांट्स द इंस्टेंट एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स. वेंट टू द जिम फॉर 2 डेज. वेर आर माई एब्स? कम ऑन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एब्स इन 2 डेज, राइट? वॉच डे मोटिवेशन रील. वाई हैजंट लाइफ चेंज येट? सो यस, दिस टेल्स अस दैट कंसिस्टेंसी एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग, बट इट्स वर्थ इट. सो गाइज, कीप क्लाइंबिंग एंड कीप बिलीविंग, एंड विद द ब्यूटिफुल थॉट्स. इट्स अ टाइम फॉर सम लवली म्यूजिक. हियर इज द सॉन्ग सुंजरा बाय सोनू निगम.

वेलकम बैक दोस्तों। तो हाँ, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट करेज एंड डिटर्मिनेशन, एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द हाइएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। टुडे इज माउंट एवरेस्ट डे। ऑन दिस वेरी डे इन 1953, द सुमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट वॉज सक्सेसफुल्ली रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ऑनेस्टली ऑल ऑफ अस हैव एन एवरेस्ट इन आवर लाइव्स। For some,

दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या यार ये आरजे जेडीबी ना इतना धीरे और स्लो सॉन्ग्स लगा रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत सॉन्ग तो है वो। ठीक है, आप सभी को जगाने के लिए एक धमाकेदार सॉन्ग, खुद देखिए फिर बाद में बताऊंगा इस सॉन्ग के बारे में।

दोस्तों वेलकम बैक। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे लाइफ के स्ट्रगल्स और पेशेंस के बारे में, और अब एक ऐसा वर्ड की बात करते हैं जो छोटा है लेकिन उसे बोलने में आधी दुनिया को डर लगता है। वो वर्ड है नो। कभी किसी ने एक्स्ट्रा काम दिया, हम बोले हाँ। कहीं जाने का मन है, कभी हम बोले हाँ। खुद टायर्ड है लेकिन फिर भी हाँ। दोस्तों ये हाँ शब्द ना इतना इंसान को फंसा देता है ना, और बाद में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और अंदर से आवाज, यार मैं हाँ ही क्यों बोला। दोस्तों नो बोलना बदतमीजी नहीं होती, कभी कभी सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। आजकल लोगों को लगता है कि हर वक्त अवेलेबल रहना इज अ गुडलीनेस। नहीं, लेकिन ऑनेस्टली इंसान को ना कस्टमर केयर हेल्पलाइन नहीं होता है। और एक फनी सिचुएशन तो ऑलमोस्ट सबके लाइफ में हुई होगी। वीकेंड आया, मन था बस सोने का, तभी दोस्त का मैसेज आया, भाई शिफ्टिंग में हेल्प कर दे यार, हम हैं। और हमने बोला हाँ भाई जरूर आ रहा हूं। फिर पूरा संडे अलमारी उठाने में और सोफे उठाने में हो जाता है। अगर मोबाइल की बैटरी लो होती है, मोबाइल की बैटरी लो हो सकती है तो इंसान की भी बैटरी लो हो सकती है, इंसान की भी शक्ति लो हो सकती है। हर वक्त इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। और वैसे भी जो लोग हर बात पे हाँ बोलते हैं ना, उन्हें ही सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा काम मिलता है। तो सोच लो, कभी कभी पोलाइटली नो बोलना भी सेल्फ केयर होता है। सिंपल सा डायलॉग, सॉरी इस बार नहीं हो पाएगा। बिलीव मी दोस्तों, लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। हाँ भले ही थोड़ा सोच में पड़ देगा कि अरे वो क्या सोचेगा, नहीं अगर वो अपना है तो वो समझेगा। तो इसीलिए नो बोलना सीखिए पोलाइटली और पीसफुली। तो चलिए दोस्तों अभी सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना फ्रॉम माइकल जैक्सन। तो हाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं माइकल जैक्सन का ना बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अक्सर अभी ये गाने आते ही रहेंगे माइकल जैक्सन के। हाँ जी।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर हर लोग खुश दिखाई देते हैं। किसी का वेकेशन, किसी का खाना, किसी का जिम ट्रांसफॉर्मेशन, और हम रात के 2 बजे फ्रिज खोल के सोच रहे होते हैं कि मैं क्या खाऊं और क्या मिलेगा।

सोशल मीडिया यूजफुल भी है, हम कनेक्टेड रहते हैं, सीखते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन कंपैरिजन डेंजरस होता है। हर स्माइलिंग फोटो के पीछे ना परफेक्ट लाइफ नहीं होती है, कभी कभी ऑफलाइन लाइफ भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। और जी हाँ, ऑफलाइन जाना और जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सनसेट का स्टोरी बनाने से पहले एक बार सनसेट को देख लो तो लो भाई, और फैमिली के साथ बैठ के वक्त ज़रूर बिताइएगा। फ़ोन को भी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, वरना एक दिन फ़ोन बोलेगा ओनर तो ऑनलाइन है पर लाइफ ऑफलाइन चल रही है। जी हाँ, कभी कभी रात में जाइए और तारों को गिनिए। बड़ा फनी है ना, तो सुनिए तारों को गिनने वाला सॉन्ग, काउंटिंग स्टार्स बाय वन रिपब्लिक।

वेलकम बैक दोस्तों। तो जी हाँ, हम अभी तक बात कर रहे थे लेट नाइट खाने के बारे में। क्यों, स्क्रॉल करते करते टाइम हो चुका है एक और हम जाके ढूंढते हैं केक। तो दोस्तों, स्क्रॉलिंग यानी कि सोशल मीडिया, हम जब इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, इतना हमारे लाइफ को वो इफ़ेक्ट करता है, इतना ज़्यादा हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है कि उसकी वजह से, यानी कि हम अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें उसका, हमारी आंखें, गर्दन, पीठ, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और हाँ बालों, ये सब इफेक्ट हो जाते हैं अगर हम सोशल मीडिया यानी कि हम लोग, हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब हम हमारा फ़ोन मोबाइल पकड़ते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वक्त का तो पता नहीं चलता, हमारे आसपास कौन है, हमारे क्या काम है, सब पेंडिंग पड़ जाते हैं। एंड हाँ, सोशल

सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते भी कमज़ोर होती जा रही है, क्या आप सोच रहे हो? हम लोगों ने हमारे दोस्तों के बारे में हमने बस स्टोरी डाल दिया बस। भाई साहब, परिवार के बारे में कौन सोचेगा? कभी माँ के साथ जाकर बैठिए, बात कीजिए, पूछिए उनसे कि उनका दिन कैसा चल रहा है। पूछिए उनको कि वो अगर वो खुश हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं।

0: हैं, कुछ तकलीफें हैं, बैठ के देखिए उनके साथ सीरियल वगैरह, क्या प्रॉब्लम है? सीरियल्स, जी हाँ, वही सास बहू वाली कहानियाँ। क्या होगा अगर 20 मिनट का सीरियल चलता है सिर्फ? 20 मिनट उनके साथ बैठ लो और चुगली कर लो, वो भी खुश, हम भी खुश, शायद रात को अच्छे अच्छे खाने के पकवान मिल जाए हमें। क्या बोलते हो? सोचिए एक बार, अगर नहीं बैठे हैं तो आज एक बार बैठ के देखिए। हाँ, अगर आपको सीरियल नहीं पसंद, कोई बात नहीं, झेल लो यार, माँ के लिए क्या इतना नहीं कर सकते हो? चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना। नहीं, खूबसूरत नहीं, एक धमाकेदार गाना। ये गाना मेरे बचपन का इतना फेवरेट है, ये बस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पता नहीं क्या है, लेकिन इतना मस्त जबरदस्त है, आप खुद ही सुनिएगा।
1: What's going on?

दोस्तों, कैसे लगे गाने? ये तो एवरग्रीन गाने हैं भाई साहब, है ना? मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, मुझे ये बताना था, जो आप सब जानते हैं ऑलरेडी, नेचर के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। फ्रेश फ्रूट्स, माउंटेन्स, कोल्ड ब्रीज और साइलेंस, शांति। जी हाँ, शांति, जो हमारे सभी लोगों के लाइफ्स में जो कमी है वो है शांति। भाई साहब, शांति शांति यानी कि पीस, पीस। हाँ जी, शांति, वो वाला शांति। तो दोस्तों, कभी हिमाचल की वादियों को देखा है? तस्वीर तो देखा होगा। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ना खुद का ही वॉलपेपर बना दिया हो। आज हम स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एप्स डाउनलोड करते हैं। जी, गेम्स, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। जी हाँ, एप्स, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। लेकिन कभी कभी बस पार्क में एक वॉक करना भी थेरेपी होता है। जी हाँ, थेरेपी, जो हम सोचते हैं कि हमें ईयरफोन्स या नहीं तो हेडफोन्स प्लग करने के बाद जो हम गाने सुनते हैं, हमको लगता है वही थेरेपी है। नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी प्रकृति से तो मिलिए, प्रकृति यानी कि नेचर। जी, कभी मॉर्निंग वॉक जाइए या नहीं तो फिर इवनिंग वॉक जाइए। अपने अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, ठीक है, चलो अपने दोस्तों के साथ जाइए। देखिए वहाँ की ताज़ी हवा, वहाँ के पेड़ पौधे और चिड़िया, कीड़े, सभी सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। नेचर स्लो होना सिखाता है, क्योंकि आजकल के इतने हम फास्ट के ज़माने में हैं, इतने ज़्यादा। आजकल स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए जब हम इतना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो भी 5G स्पीड पे। लेकिन कभी कभी

चले जाइए बाहर अपने दोस्तों के साथ बिना फोन के, या नहीं तो फोन्स को साइलेंट कर दीजिए, कुछ समय के लिए ना इंटरनेट बंद कर दीजिए, और देखिए आपको भी पता चलेगा कि आपके आसपास और दुनिया में क्या चल रहा है। जी हाँ, तो रही बात नेचर, नेचर का पास हर हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ये मैं मानता हूँ। फ्रूट्स का टेस्ट तब और भी अच्छा लगता है जब फोन साइड में नहीं होता है। जी हाँ, तो हम सोचते हैं कि यहाँ बस ऑनलाइन से ऑर्डर कर दिया, यही है एकदम मस्त ज़बरदस्त फूड। नहीं भाई, कभी तो भी देखिए फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स से याद आया, मैं कुछ महीने पहले, लाइक 3-4 महीने पहले शायद, हाँ, मैं लद्दाख गया था। वहाँ पर इतना ब्यूटीफुल, मेरा मेरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी, तो मैं जब लद्दाख गया था, वहाँ पर वहाँ की मौसम, वहाँ के लोग भी, और सबसे सबसे स्पेशल थे वहाँ के सेब। जी हाँ, हम जो यहाँ पर सिटीज़ में जो हम सेब खरीद के खाते हैं, एप्पल, वो इतना ज़्यादा केमिकल्स और इतने सारे मेडिसिन्स यूज़ किया हुआ होता है वो। मैं जब लद्दाख में था, वहाँ पर मुझे भूख लगी, मैं अपने कमरे के बाहर निकला, पेड़ है सेब का, तोड़ लिया और खा लिया। बिलीव मी, मैंने अपने अपने लाइफ का ना सबसे बेस्ट सेब खाया है लद्दाख में। भले ही छोटे छोटे थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर सेब खाया, और जब मैं सोचने लगा कि इतने सालों से मैं क्या खा रहा हूँ, मतलब जब आपको लगेगा कि इतना टेस्टी होता है वो। एंड सिर्फ सेब नहीं, वहाँ पर मैंने एप्रिकॉट्स भी खाए थे, एप्रिकॉट्स तोड़ के खाए थे वहाँ पर पेड़ों के, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जी, तो चलिए हम अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, मिट्टी दी खुशबू, बाय आयुष्मान खुराना।

वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियो में टाइम हुआ है 11:50 और हमारे पास हमारे लिजनर्स जुड़े हैं यहाँ पर मैसेजेस के थ्रू भी। यहाँ पर इमरान जी डालते हैं गुड मॉर्निंग जेडी, और वो डालते हैं ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक इमरान जी, और थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने मुझे एक प्यारा सा फोटो भेजा है ब्लेसिंग्स के साथ, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं सरवर अली जी भी। सरवर अली जी यहाँ पर हमको वीडियो डालते हैं कि वो रेडियो सुन रहे हैं, और उनके पास एक पुराना सा रेडियो है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड सरवर अली जी, आपको भी ईद मुबारक, एंड थैंक यू सो मच आपने हमको हमें आप सुन रहे हैं। एंड गाइस, जी हाँ, तो माइकल जैक्सन के बारे में मैंने बोला था कि मैं माइकल जैक्सन के गाने बजाऊंगा आज। जी, तो मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ माइकल जैक्सन का, एंड मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी माइकल जैक्सन का ही बजता है, जो कि है ह्यूमन नेचर का। सुनिए एक बार।

जी हाँ दोस्तों, तो हाँ मैं माइकल जैक्सन का फ़ैन हूँ 2009 से। दुख भरी बात यह है कि माइकल जैक्सन का डेथ हुआ था 2009 में ही। तो मुझे उनके बारे में पता चला टीवी में जब इनके बारे में चल रहा था कि इनका देहांत हो गया और वो अब नहीं रहे। एक महीने तक टीवी में उनके गाने बजते रहे, एंड ये भी कहा जाता है कि उस दिन गूगल भी क्रैश हो गया था। अफसोस की बात यह है कि मैं उनकी उनका फ़ैन तब बना जब वो यहाँ से नहीं रहे, लेकिन उनके गाने आए हाय इतने लाजवाब, मतलब समझ नहीं आता है कि ये इंसान इतना कैसे कर सकता है। एक ही इंसान गाना लिखता वही है, गाना गाता भी वही है, इसको कंपोज करता वही है, कोरियोग्राफी भी वही करते हैं, डांस भी वही करते हैं, एक्ट भी वही करते हैं। भाई साहब, ये इंसान ना वाकई में एक गॉड गिफ्टेड इंसान है विथ सो मच ऑफ टैलेंट। सो आई एम गोइंग टू प्ले अ ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम माइकल जैक्सन। द सॉन्ग नेम इज़ हील द वर्ल्ड।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में

0: 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and has said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट आरजे जेडी, जेडी यानी जयदीप। तो दोस्तों, बाहर भयंकर गर्मी है यार। कृपया करके एक छोटा सा जेंटल रिमाइंडर, स्टे हाइड्रेटेड, पानी अच्छे से पीजिए। और जी हाँ, प्लीज़ कृपया करके ना कपड़े ना फुल पहनिए, क्योंकि मैं परसों हाफ स्लीव्स पहन के जा रहा था, शर्ट अच्छे से और एक घड़ी लगाकर, एंड धूप में इतना टैनिंग हो गया कि मेरा हाथ इतना पैची पैची लग रहा है, जैसे कि जहाँ पर घड़ी पहना है वहाँ पर सफ़ेद, और जहाँ तक मेरा शर्ट का स्लीव था वहाँ पर सफ़ेद, और बाकी पूरा टैन। और मेरे पैर भी ऐसे ही हो गए, मेरा मतलब मेरे चप्पल में जी जो छेद होते हैं, जहाँ जहाँ पर छेद होते हैं वहाँ वहाँ पर पूरा टैन हो गया है और बाकी पूरा सफ़ेद। तो कृपया करके अपने स्किन का ध्यान रखिए, पानी अच्छे से पीजिए, एंड हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडास, इनके बदले में ना थोड़ा सा फ्रूट जूस वगैरह पीना चालू कीजिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। सिर्फ फ्रूट जूस ही नहीं, कोकोनट वाटर, गन्ने का जूस, ये सब नेचुरल जूसेस, फ्लूइड्स लीजिएगा ज़रूर। तो दोस्तों आइए, इस गर्मी में ना मन कर रहा है कि कहीं स्विमिंग पूल में जाके कूद जाए, ठंडे ठंडे पानी वाला। तो चलिए सुनते हैं एक इसी से रिलेटेड एक गाना, ठंडे ठंडे पानी का।
1: ठंडे ठंडे पानी

0: दो पड़ोसियों से
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।
1: मम्मी को तो डैडी से

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, हम अभी तक बात कर रहे थे गर्मी के बारे में और हाइड्रेशन के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से अपने आप को आप हाइड्रेट कर सकते हो। दोस्तों, गर्मी से याद आया है, आप कहीं पर गए हो घूमने गर्मियों की छुट्टियों में या नहीं? तो कोई प्लान बना लीजिए, कोई ठंडी सी जगह जैसे कि ऊटी या शिमला। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं गया था असम, मेघालय और अरुणाचल को, अरुणाचल प्रदेश को। वहाँ का प्रदेश और वहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है, खासकर कि मेघालय। वहाँ पर इतने सारे झरने हैं, इतने सारे झरने हैं, वाह क्या बोले। वहां का नजारा इतना खूबसूरत रहता है कि मन ही नहीं करता है वहां से हटने का, और घूमने के लिए बहुत जगह है वहां पर। तो कृपया करके ना, जाना है तो एक कम से कम 10 से 15 दिन की छुट्टी लेके जाइए, अगर हो सके, अगर मिल सके तो। आजकल के कॉरपोरेट सेक्टर में कहाँ मिलता है छुट्टियां। जी मैं जानता हूँ, मैं भी उसी को बिलोंग करता हूँ। तो हाँ, मेघालय, इतने सारे वाटरफॉल्स, इतने सारे झील्स हैं वहाँ पर। और एक और बात अरुणाचल की, जब मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, वहाँ पर तवांग करके एक जगह है जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रहता है। वहाँ पर सांस की बहुत कमी रहती है, एंड रोडों में पूरा बर्फ जमा हुआ होता है, एंड अकेले बिल्कुल नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि कब कहाँ किधर कैसा हादसा होता है पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से चलती है। तो जी, वहाँ पर जब मैं गया था, इतना सारा बर्फबारी था, लेकिन नज़ारा ऑल वर्थ इट। जो भी मैंने पैसे खर्च किए, जो भी मैंने वक्त खर्च किया वहाँ पर, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। इतने सारे मेमोरीज लेके मैं आया, 10 दिन का ट्रिप था। मैं और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं कुछ गाने।

वेलकम बैक दोस्तों। तो हाँ जी, गर्मी के बारे में हम बात कर रहे थे, अरुणाचल और असम के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग हैं ऐसे कि गर्मी में भी कुछ लोगों को चाय, वो भी गर्मा गर्म चाय चाहिए होता है। मैं वाकई में इन लोगों को सलाम करता हूँ। इतने गर्मी में भी ये लोग गर्म चाय पीते हैं और बोलते हैं अगर सुबह सुबह या नहीं तो दोपहर को चाय नहीं मिलेगी तो मेरा सिस्टम काम नहीं करता है। और कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी कॉफ़ी लवर्स भी। हाँ जी, कॉफ़ी बोलते हैं ये कॉफ़ी नहीं, ये इंक है मेरा। इंक यानी कि जो पेन के अंदर जो होता है स्याही, इंक जी। तो चाय और कॉफ़ी कोई बात नहीं, अच्छी आदतें हैं, लेकिन आपको ये बात भी जानना ज़रूरी है कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं। चाय में एक ऐसे तत्व होता है जो एंटी एजिंग यानी कि बुढ़ापा कम कर देता है, जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देता है। तो हाँ जी, जो जो भी मुझे सुन रहे हैं खुश हो जाइए, क्योंकि हम सिर्फ चाय पीते हैं क्योंकि हमको आदत हो गई है, लेकिन इसके बारे में भी तो जानिए। चाय में एंटी एजिंग होता है और चाय में एक ऐसे तत्व और ऐसे न्यूट्रिशंस भी होते हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। और रही बात कॉफ़ी, भाई साहब कॉफ़ी जिनका इंक है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ है जो अपने पूरे नर्वस सिस्टम को ना सही ट्रैक पे दिला देता है, एकदम स्ट्रेट, दैट हिट्स स्ट्रेट टू द ब्रेन। तो जी हाँ, नर्वस सिस्टम, अपना मेटाबॉलिज्म, अपना नर्वस सिस्टम, वो सब कॉफ़ी बहुत हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम को सेट करने में। सुबह सुबह हम जब हमारे काम को या नहीं तो कॉलेजेस को नहीं तो स्कूल को जब जाते हैं, तो इससे पहले एक छोटा सा कप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। जी ब्लैक कॉफ़ी यानी कि उस कॉफ़ी में ना चीनी होता है और ना दूध होता है। ये इतना हेल्दी होता है ब्लैक कॉफ़ी, बस ज़्यादा आदत नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन कैफ़ीन जो है ना, ज़्यादा ओवरडोज भी हो जाए तो नर्वस सिस्टम भाई साहब ढीला कर देगा। वो जितना वो हमारे लिए यूज़फुल है उतना ही हमारे लिए हानिकारक भी होता है। सो एनीथिंग विच इज़ इन लिमिट, एनीथिंग नो मैटर वॉट, एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज़ इन लिमिट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो काइंडली मेक श्योर टू कीप योर हेल्थ सेफ एंड कीप योर लाइफ्स हेल्दी।

हेलो हेलो, वेलकम बैक। हम अभी तक सुन रहे थे गाना शान का, भूल जा। जी हाँ, इतना मीनिंगफुल गाना है वो। भूल जा जो हुआ तुझे, भूल जा, मुस्कुरा हर कदम तुझे। इतना खूबसूरत, मतलब हमको ना हमारे सारे जो भी हमारे मतलब दुख दर्द है उसको हमें भूल जाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, इट्स जस्ट लाइक हमारे साथ

कोई घटना हुई है या नहीं, तो कोई मेमोरी हमारे दिल पर या दिमाग में छा गई है। वो ऐसा होता है जैसे कि कोई बंद दरवाज़ा जैसे, और वो भी अंधेरा। आप भाई साहब, जब आप मुड़ोगे नहीं तो दूसरे दरवाजे कहाँ से निकलेंगे आपको? इसीलिए भूल जा जो हुआ तुझे, मुस्कुरा। तो दोस्तों, अभी अभी वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का, हेलो रेनबो का, जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और आप अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। दोस्तों, मैं बहुत जल्द आपको आज का सवाल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा फेवरेट माइकल जैक्सन का एक गाना।

हेलो दोस्तों, तो जी हाँ, आपका सेगमेंट आ चुका है हेलो रेनबो का। और सवाल से पहले मैं आपको नंबर्स बोल दूँ। हमारे फ़ोन लाइन नंबर्स है 0402323-0030 और 0402323-4821। एक और नंबर है 0402970-4715। और अगर आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो वो नंबर है 4023234822। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू मैसेजेस एंड कॉल्स। तो दोस्तों, आज का सवाल मैं बता दूं, आज का सवाल ये है कि नए ज़माने में ऐसा कौन सा बदलाव है, जो न्यू जनरेशन है अभी उसमें ऐसा कौन सी चेंजेस है जो आपको अच्छा लगता है, जो पुराने ज़माने में नहीं हुआ करते थे। आप समझ रहे हो, एक ऐसा चेंजेस। देखिए, जैसे अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं तो हालातें सेम नहीं रहती है, तो ऐसा कौन सा चेंजेस है जो पुराने ज़माने में नहीं था और नए ज़माने में है वो आपको अच्छा लगता है। तो मैं आपको हमारे फ़ोन लाइन नंबर्स फिर से बता दूं, वो है 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715। और व्हाट्सएप नंबर है 4023234822।

0: दोस्तों चलिए हम लेते हैं अपने पहले कॉलर को। हेलो रेनबो
1: हाय, आई
0: जी। हाँ जी बताइए, कैसे हैं आप और आपका नाम क्या है?
1: एम फाइन। मेरा नाम विजय विजयानंद है। मैं एडवोकेट हूँ हैदराबाद से। नमस्कार।
0: हाँ जी विजय जी नमस्कार, आप कैसे हैं?
1: फाइन फाइन। मैं बहुत अच्छा लगा आपका गाने का जो रिवर नंबर्स जो
0: जी
1: माइकल जैक्सन के साथ जो चल रहा है
0: जी जी
1: वो बहुत बढ़िया है। माइकल जैक्सन, आई एम ऐसा ए बिग फैन। आई एम मोर देन 50 इयर्स,
0: ओ वाओ
1: बट
0: सर,
1: आई लव माइकल जैक्सन। पहले से माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ,
0: जी जी
1: बिली
0: जी
1: जीन से लेके थ्रिलर से लेके।
0: जी आपने मूवी
1: अभी
0: देखी है माइकल
1: रिसेंट,
0: जैक्सन की?
1: हाँ जी हाँ, माइकल जैक्सन का जो मूवी और डॉक्यूमेंट्री भी देखी है पहले का,
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा लगा।
0: जी
1: मिस एंड
0: वाकई में
1: उसका
0: मैं
1: एक
0: दो बार
1: न्यू
0: जा चुका
1: बेस्ट
0: हूँ
1: बहुत अच्छा लग रहा है। आप, यू हैव टेकन आउट, यू हैव टच द पल्स ऑफ बहुत लोगों का।
0: जी।
1: या पुराने मीन्स या बिफोर जनरेशन एंड दिस जनरेशन,
0: आई अग्री आई अग्री। नहीं सर, बिफोर
1: जिनकी
0: जनरेशन आज के जमाने में भी बहुत लोग हैं जो उनके फैन हैं। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट फैन।
1: यस, आई नो 2009 से आप फैन है,
0: ओहो,
1: मैं
0: तो आप स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: सुन रहा
0: सर
1: हूँ। मैं
0: जी।
1: एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, मीन्स छोटे छोटे कामों में, लेकिन आपके बात, हर एक बात सुन रहा था। आप, मुझे अफसोस हुआ आप डेथ के बाद उनके फैन हुए,
0: जी
1: लेकिन पहले से आई डोंट नो, मे बी यंगर,
0: हाँ
1: बट
0: जी
1: द
0: हाँ
1: थिंग
0: जी
1: इज
0: हाँ
1: ब्यूटीफुल
0: जी
1: दैट यू हैव कम, यू हैव नोन द इम्पोर्टेंस मीन्स म्यूजिक का,
0: जी हाँ जी
1: इंटर कॉन्टिनेंटल म्यूजिक का। आप क्वेश्चन पूछे थे नया और ओल्ड जनरेशन
0: हाँ
1: के
0: जी हाँ
1: लिए।
0: जी आज का सवाल है, नए जमाने में जो ऐसा कौन सा बदलाव है, व्हाट आर द चेंजेस इन द न्यू जनरेशन जो पुराने जमाने में नहीं थे और आपको अच्छा लगता है?
1: या नए जनरेशन का ये है कि थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, और अडॉप्ट करने के जो मीन्स एबिलिटी है नए जनरेशन में वो
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी खराब कर देगी। मे बी वन, ये स्मॉल स्मॉल तबके के लोगों को जो है उसका असर होता होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे देखे तो मैं हैदराबाद का हूँ, हिंदी ऐसा ही रहेगा।
0: नो नो इश्यू सर, आप हिंदी
1: तो
0: तेलुगु इंग्लिश कुछ भी बात कर सकते
1: या
0: हैं।
1: बड़े पैमाने पे देखे तो नए जनरेशन

0: కూడా కరెక్టే. నిజంగా మీ మీ థాట్ అనేది నిజంగా కరెక్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాకి మాతో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసినందుకు. తో జీ హా, నరసింహా జీ కా యే కహనా హై కి మూవీస్ మూవీస్ మే బహుత్ సే బదలావ్ ఆయే హై. జీ కరెక్ట్ హై, క్యూంకి ఏక్ జమానే మే బహుత్ బహుత్ బహుత్ ముష్కిల్ థా మూవీస్ నికాల్నా. ఏక్ మూవీ కో కహీ కహీ సాల్ నికాల్తే థే. లేకిన్ ఆజ్ ఆజ్ కే జమానే మే భాయి సాహబ్, టెక్నాలజీ ఇత్నీ ఇత్నీ ఇత్నీ జ్యాదా బఢ్ గయీ హై నా. హమ్ ఖుద్ ఘర్ బైఠే బైఠే హీ నా ఫోన్ కే సాథ్ మూవీ బనా లే సక్తే హై. आजकल के एआई का ज़माने में इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, घर बैठे बैठे मूवी बना सकते हैं. तो चलिए आइए अब मिलते हैं, जुड़ते हैं एक नए कॉलर के साथ. हेलो रेनबो.
1: हेलो.
0: हेलो. यस
1: जयदीप. हाय.
0: हाय, आपका नाम
1: क्या चल रहा है आपका शो? मेरा नाम प्रिया है.
0: हाय प्रिया, आप कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं हैदराबाद से ही बात कर रही हूँ, मेहदीपट्टनम से.
0: जी जी, बताइए प्रिया जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे होंगे?
0: जी जी, थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ. तो प्रिया जी, आपने आज का टॉपिक सुना?
1: हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक है. पहले
0: जी जी, तो आज का टॉपिक ये है जो आपने ऑलरेडी सुना, मैं एक बार बता देता हूँ. नए जमाने में ऐसे कौन से बदलाव है, ऐसे कौन से चेंजेस है जो आपको अच्छे लगते हैं और वो जो पुराने जमाने में नहीं थे?
1: वैसे मैं हेल्थ केयर में काम करती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा है कि हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी.
0: जी जी जी.
1: पहली बात ये है कि घर पे ही ब्लड सैंपल देने ऐसे सहूलत है कि ब्लड पे ही आके करवा सकते हैं अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को.
0: हाँ जी,
1: और
0: हाँ जी.
1: ये मुझे ना बहुत नीडल्स का डर बहुत है कि चुभता है तो बहुत दर्द होता है.
0: जी जी, कुछ
1: तो
0: लोगों को रहता है
1: फोबिया.
0: जी.
1: और ये मुझे अच्छा लगा कि वेन विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो लाइट के थ्रू आता है, इंफ्रारेड लाइट, तो उसके थ्रू ना अपने अंदर के नस दिख जाते हैं और वेन में इंसर्ट करना नीडल इजी हो जाता है.
0: अरे वाह.
1: ना हम मल्टीपल प्रिक बचा सकते हैं, यू नो, लाइक
0: स्टेराइल
1: भी होता है तो अच्छा होता है कि कंटामिनेटेड कुछ नहीं रहता है, क्योंकि मल्टीपल प्रिक से कुछ भी पंक्चर हो सकता है ना.
0: जी
1: वो मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी जी
1: पसंद आया है.
0: तो लगता है हमारे श्रोता हैं, हमारे लिजनर्स सारे सुन रहे होंगे और वो लोग खुश हो रहे होंगे कि बहुत लोगों को होता है जो सुई से डर लगता है. तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी प्रिया जी ने बताया है जो राहत दे सकती है बहुत लोगों को. थैंक यू सो मच प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बात शेयर करने के लिए.
1: थैंक यू
0: जी. तो दोस्तों आइए जुड़ते हैं एक और कॉलर के साथ. हेलो रेनबो. हेलो. हेलो, लगता है लाइन कट गया. तो चलिए, ओ हमारे पास तो मैसेजेस भी आए पड़े हैं यहाँ पर. अश्विन जी लिखते हैं कोठी कुशल मार्केट से, जय श्री कृष्णा. अश्विन जी आपको भी जय श्री कृष्णा. और ये गुड मॉर्निंग डालते हैं, शायद मैंने मैसेज लेट से खोला है, अभी गुड आफ्टरनून हो रहा है, तो गुड आफ्टरनून अश्विन जी. तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं एक गाने की तरफ.

दोस्तों, तो वक्त आ चुका है मुझे विदा लेने का। मुझे इजाज़त दीजिए। और आज हमने बहुत सारी बातें की। आज की इस खूबसूरत मुलाकात में हमने बात की दुनिया में पीस बनाए रखने वाले हीरोज़ की, माउंट एवरेस्ट जैसे हौसलों की, हेल्थ और डाइजेशन की, टी और कॉफ़ी की प्यास से डिबेट की, और लाइफ के उन फनी मोमेंट्स को जो हर दिन थोड़े से रंगीन बना देते हैं। याद रखिए, लाइफ पार्टनर नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी हैप्पी हैबिट्स, छोटी छोटी हैप्पी हैबिट्स ब्यूटीफुल ज़रूर बना देती है। तो हमेशा याद रखिए, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होता है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। आप सुन रहे थे एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और कहीं मत जाइएगा, आपको सभी लोगों को मज़ेदार धमाकेदार शो देने वाली है ज्योतिर्मय जी जश्न-ए-हैदराबाद प्रोग्राम में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 9:30 और 10 सेकेंड में तेलुगु प्रोग्राम सभी तक आप सुन रहे थे। अब आवाज़ होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: ख़त्म हो गया है। जब मायूसी के बादल हमें घेर लेते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपने अंदर के हौसले को जगाना होता है। तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं, साइंसदानों और कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उन्हें बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हज़ारों बार कोशिश की, लेकिन वो हर नाकामी को एक नया सबक समझते रहे। उनका मशहूर कौल है कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते। यह हौसले की ही आला मिसाल है, हौसला और मकसद का तायुन। हौसला हमें खतरात मोल लेने की तरगीब देता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमें हौसले की ज़रूरत होती है। नई महारतें सीखना, नए ख्यालात पेश करना या किसी भी मुश्किल काम में पहल करना, ये सब हौसले के बगैर मुमकिन नहीं। याद रखें, हर बड़ा ख्वाब हौसले की पहली सीढ़ी चढ़ने से ही पूरा होता है। चाहे वो किसी नए कारोबार का आगाज़ हो, कोई मुश्किल इम्तिहान पास करना हो या अपने माशरे में कोई मुस्बित तब्दीली लाना हो, ये सब हौसले की ही बुनियाद पर खड़े हैं। साबित खदमी और खुद एतमादी। हौसला हमें साबित खदमी सिखाता है। जब हम किसी मकसद के हुसूल के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कभी लोग हमारी हौसला शिकनी करते हैं, कभी हालात साजगार नहीं होते, और कभी खुद हमें अपने इरादों पर शक होने लगता है। ऐसे में हौसला ही हमें अपने मकसद से भटकने नहीं देता और हमें मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करते रहने पर आमदा करता है। यह हमें खुद एतमादी देता है कि हम उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इन पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खिलाड़ी जो मैच के आखिरी लम्हात तक अपना हौसला नहीं हारते और जीत के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, वो फतेहयाब होते हैं। हौसला और मुस्बित सोच। हौसला हमारी शख्सियत को निखारता है। एक हौसलामंद शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। उसकी मुस्बित सोच और उसकी अज़्म की पुख्तगी दूसरों को भी आगे बढ़ने की तरगीब देती है। जब आपके अंदर हौसला होता है, तो आप मुश्किलात को मसाइल नहीं बल्कि मौके समझते हैं, जब आपको मज़ीद मजबूत बनाते हैं। ये एक वायरल असर की तरह है। जब एक शख्स हौसला दिखाता है, तो उसके आसपास के लोग भी मुतासर होते हैं और अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानते हैं। हौसले की परवरिश कैसे की जाती है? सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अंदर इस हौसले की शमा को कैसे रोशन रखें और इसे कैसे परवान चढ़ाएं। अपने छोटे छोटे मकासद तय करें। जब आप छोटे अहदाफ हासिल करते हैं, तो आपका हौसला बढ़ता है और आप बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार होते हैं। नाकामियों से सीखें। हर नाकामी को एक सीखने का मौका समझें, ना कि मायूसी का सबब। अपनी गलतियों से सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। मुस्बित लोगों से ताल्लुक़ रखें। ऐसे अफराद के साथ वक्त गुजारें जो आपको तरगीब दें और आपके हौसले को बुलंद करें। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। अपनी ताकतों को पहचानें और उन पर एतमाद करें। अपने माजी की कामयाबियों को याद करें। जब कभी हौसला टूटने लगे, तो उन लम्हात को याद करें जब आपने किसी मुश्किल को उबूर किया था। तो दोस्तों, आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारेंगे। चाहे जितनी भी मुश्किलात आएं, हम उनका सामना करेंगे, उनसे सीखेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। याद रखें, कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हौसला रखते हैं, जो गिरकर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने दिलों में हौसले की शमा रोशन रखें, क्योंकि यही शमा हमें तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाती है और हमें मंजिल तक पहुंचाती है।
1: हर्फ़ताबिंदा, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद नूरुद्दीन से।

0: इस नगमे के बाद चलिए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत लिया गया इंटरव्यू। आज का इस ये इंटरव्यू लिया गया है डॉक्टर उज्मा बतूल से। आज की बातचीत का मौजू रहेगा डिप्रेशन और इंटरव्यू निगार है रोहिना। तो आइए सुनते हैं।
1: आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर उज्मा तशरीफ लाई हैं। डॉक्टर उज्मा का डॉक्टर माइक प्रोग्राम में हम तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर उज्मा।
2: आदाब।
1: आज हम स्ट्रेस पर सेर हासिल गुफ्तगु करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ज़हनी तनाव की वजह से इंसानी सेहत पर क्या असर होता है?
2: मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार होने की वजह से जिस्मानी बीमारियां जैसे कि सर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारियां होने का इम्कान ज़्यादा होता है। ये सारी जिस्मानी बीमारियां हैं। इसी तरीके से ज़हनी तनाव की वजह से ज़हनी बीमारियां होने का इम्कान भी ज़्यादा होता है।
1: अच्छा।
2: ज़हनी बीमारियां दो किस्म की होती हैं।
1: जी।
2: पहला जिसको हम न्यूरोसिस कहते हैं, इसमें मरीज़ को अपनी बीमारी का इल्म होता है, जैसे कि डिप्रेशन, PTSD, फोबियाज। और दूसरी किस्म जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, जिसमें मरीज़ को अपने बीमार होने का इल्म नहीं होता, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया।
1: अच्छा, डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है?
2: डिप्रेशन का मरीज़ हर वक्त उदास और अफसरदा और मायूस रहता है।
1: अच्छा।
2: वो रोज़मर्रा के कामों पर तवज्जो नहीं दे पाता।
1: जी।
2: जिन चीज़ों में मरीज को पहले दिलचस्पी और मज़ा आता था, अब उनमें दिल नहीं लगता।
1: जी।
2: मरीज़ अपने आप को औरों से कमतर समझने लगता है।
1: जी।
2: वो माजी के छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे वाक़यात पर ख़ुद को इल्ज़ाम देना शुरू करता है और मुस्तकबिल से मायूस हो जाता है। मरीज़ की भूख ख़राब हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और नींद भी ख़राब हो जाती है। रोज़ सुबह 6 बजे उठा करता था, तो डिप्रेशन की वजह से वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है।
1: अच्छा।
2: और दोबारा नींद लगने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
1: जी।
2: अगर बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए तो मरीज़ को ख़ुदकशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुदकशी करने की कोशिश भी करता है।
1: अच्छा। जी। डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजूहत है, हम जानना चाहेंगे।
2: जी, डिप्रेशन होने के बहुत सारे वजूहात हैं। पहली वजह कि दिमाग में कुछ केमिकल्स जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनकी मकदार कम हो जाना, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हालात और वाक़यात, जैसे कि किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल, तलाक, अचानक से नौकरी का ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ों से हम भी गुजरते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन के मरीज़ के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है।
1: अच्छा।
2: कुछ जिस्मानी बीमारियां जो तवील अरसे तक चले, जिसके इलाज के लिए मरीज़ को रोज़ गोलियां खाने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि कैंसर की बीमारी, सांस की बीमारियाँ, दिल के बीमारियाँ। डिप्रेशन अगर देखा गया तो औरतों में मर्दों से 2 गुना ज़्यादा होता है।
1: अच्छा।
2: देखा जाए तो 30 से 40 साल की उम्र में डिप्रेशन के अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती है। डिप्रेशन अगर आपके घर में से किसी को है तो आपको आने का इम्कान भी ज़्यादा है। अगर आपके दोनों वालदेन को है तो आपको आने का इम्कान 50% है। अगर किसी एक को है तो आपको आने का इम्कान 10 से 25% है।
1: जी डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन में आप किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं, या किसी को हो जाए तो हम उस मरीज़ की किस तरह से मदद करेंगे?
2: जी, सबसे पहले डिप्रेशन के मरीज़ को ये समझना

0: जो PTSD के मरीज होते हैं झिंझलाए हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं छोटी छोटी सी बात पर भी,
1: अच्छा
0: क्योंकि ये जज्बाती सदमे की कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलते। और इन्हें उस वाक़े के बारे में बताने का मौका दें जब वो
1: जी
0: अपने एहसास और अपना तजुर्बा बयान कर रहे हो, तो आप बीच में मदाखलत ना करें या
1: अच्छा
0: अपने ज़ाती तजुर्बात इन पर मुसल्लत ना करें।
1: जी अच्छा PTSD से किस तरह सेहतयाब हुआ जा सकता है?
0: अगर आप कोई अज़ियतनाक हादसे से गुजरे हो और आप उसकी वजह से ज़हनी अज़ियत में हैं और उससे निकल नहीं सक रहे, तो
1: जी
0: फ़ौरन माहिर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट से रुजू करें।
1: अच्छा
0: PTSD के इलाज के काफ़ी सारे तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है साइकोथेरेपी,
1: अच्छा जी जी
0: जिसको हम नफ्सियाती इलाज कहते हैं।
1: जी
0: इसमें मरीज़ को वाक़े के बारे में याद दिलाया जाता है, इसका तज्ज़िया किया जाता है, इसके मंतिक तलाश किए जाते हैं, जिससे मरीज़ का जहन उस वाक़े को दिमाग के हाफिज़े के खाने में रखकर दूसरे मामूल के कामों की तरफ मुतवज्जे होता है।
1: जी अच्छा
0: दूसरा तरीक़ा ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम सोच और बर्ताव की साइकोथेरेपी कहते हैं।
1: जी
0: ये थेरेपी में मरीज़ को अपनी यादों को मुख्तलिफ तरीक़े से सोचने में मदद दी जाती है,
1: जी
0: ताकि ये यादें कम तकलीफ़ दे और काबिले बर्दाश्त हो।
1: अच्छा
0: और जब भी ये अज़ियतनाक वाक़या या याद उसके जहन में ताज़ा हो, तो वो उसको नज़रअंदाज कर सके।
1: अच्छा
0: तीसरा तरीक़ा है दवाइयों के ज़रिए, जिसको हम SSRIs और बेंजोडाइजपिन्स के नाम से
1: अच्छा
0: जानते हैं।
1: जी जी जी
0: और चौथा तरीक़ा ये है कि आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग होती है।
1: जी अच्छा डॉक्टर उज्मा, अगर इस मर्ज़ का पता चल जाए तो मरीज़ से किस तरीके से हम बिहेवियर करें, उसे कैसा सलूक करें कि वो इस मर्ज़ से निकल आए?
0: PTSD के मरीज़ हर वक्त बेसुकूनी में रहते हैं, हर वक्त इर्द गिर्द नज़र दोहराते रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। जब भी वो सोते हैं तो वो उस ख्वाब में भी वो लोग वो हादसे को अगर देखेंगे तो
1: जी
0: नींद से चमक कर उठते हैं।
1: जी
0: तो जब भी वो लोग उस हादसे के बारे में कुछ ज़्यादा सोचने लगे, तो जिस्मानी कैफियत जैसे कि दिल की धड़कन तेज़ होना, सर दर्द, पसीने, हाथ पैर वज़न हो जाना, ये सारी
1: जी
0: चीज़ें उन लोगों में दिखाई देती हैं,
1: अलामतें हैं
0: अलामतें हैं। तो
1: जी
0: अगर आपको ये सारी अलामतें नज़र आ रही हैं, तो उनसे बात करें, उनसे रुजू करें। अगर उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है तो उनको वहाँ पर लेकर जाएं।
1: जी
0: अगर आपको मालूम करना है कि फलां शख्स PTSD से बाहर निकल चुका है,
1: जी जी
0: तो उसको मालूम करने के तरीक़े ये है कि जब वो मरीज़ या फिर वो शख्स
1: जी
0: उस वाक़े के बारे में, हादसे के बारे में सोचना बंद कर दे, या फिर
1: अच्छा
0: अगर सोचे तो भी
1: जी
0: उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इस हद
1: अच्छा
0: तक के उसके जिस्मानी
1: जी
0: अलामात ज़ाहिर होना
1: वो
0: शुरू हो।
1: हादसात का असर उसके जिस्मानी और जहनी सतह पर नहीं नज़र आना चाहिए, तो वो उस मर्ज
0: जी
1: से निकल चुका है मालूम हो जाएगा
0: जी
1: जी। इसके अलावा डॉक्टर उज्मा, कोई और अमराज हैं जहनी तनाव के, इस बारे में कहना चाहेंगी आप?
0: जी स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है
1: जी
0: जिसके
1: अच्छा
0: दो तरह के अलामात होते हैं,
1: जी
0: एक मुस्बित और दूसरी मनफी।
1: जी
0: अगर ये अलामात एक महीने से ज़्यादा मुसलसल किसी इंसान में पाई जाए, तब हम उसको स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट कहते हैं।
1: अच्छा
0: मुस्बित अलामात वो अलामात होती है जो बीमारी के हिस्से में मौजूद रहती है और
1: अच्छा
0: सेहतमंदी के हिस्से में नहीं रहती,
1: जी
0: जैसे कि हैल्यूसिनेशंस। किसी शय या इंसान की गैर मौजूदगी में मरीज़ को वो शय या इंसान नज़र आता है, इसको हम विजुअल हैल्यूसिनेशंस कहते हैं।
1: जी जी जी
0: मरीज़ को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, कभी ये आवाज़ें मरीज़ से बात करती हैं, कभी ये आवाज़ें खुद में बातें करती हैं, इसको हम ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस कहते हैं। स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ों में ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस ज़्यादा पाई जाती हैं और विजुअल हैल्यूसिनेशंस कम मकदार में पाई जाती हैं। ये
1: जी
0: आवाज़ें और ये दिखाई देना मरीज़ के लिए उतना ही हकीकी होता है जितना
1: जी
0: कि आज आप और मैं बात कर रहे हैं या आप और मैं
1: अच्छा
0: एक दूसरे को देख रहे हैं।
1: जी, जबकि वो नहीं रहते
0: जी
1: सामने, वो जहनी उन लोग इख्तिरा कर लेते हैं कि ये हकीकत ऐसी है बोल करके।
0: जी
1: अच्छा
0: दूसरी अलामत ये है डेल्यूजन्स। मरीज़ को ऐसे ख्यालात पर 100% यकीन होता है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, तो ऐसी
1: जी
0: गलतफहमी जो सबूत देने पर भी दूर नहीं की जा सके, उसको
1: अच्छा
0: डेल्यूजन कहते हैं।
1: जी
0: जैसे कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मरीज़
1: जी
0: को ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। डेल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, मरीज़ को ऐसा लगता है कि हर वक्त

0: कोई ना कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। बास
1: अच्छा
0: मरीजों को ऐसा लगता है कि टीवी या रेडियो उनके लिए खास पैगाम दे रहा है। बास मरीजों को ऐसा लगता है कि इनके ख्यालात खुद इनके नहीं है, बल्कि कोई और इनके जहन में ये ख्याल डाल रहे हैं, जिसको
1: अच्छा
0: हम थॉट इंसर्शन कहते हैं।
1: जी।
0: मनफी अलामत। मनफी अलामत ज़्यादा नुमाया नहीं होती, लेकिन
1: जी
0: मरीज़ की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती हैं।
1: अच्छा जी
0: जैसे कि ज़िंदगी में दिलचस्पी का ख़त्म हो जाना, कुछ करने का जज्बा नहीं होना, एहसासात ख़त्म हो जाना,
1: जी
0: किसी बात से खुशी नहीं होना। मरीज़ को अपना खुद का सेल्फ केयर करना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि नहाना धोना, साफ़ सफाई, और अपने घर में साथ रहने वाले लोगों से बात करना भी बहुत मुश्किल होता है।
1: अच्छा, तो क्या ये तन्हा पसंद हो जाता है
0: जी,
1: इसमें? डॉक्टर इसमें ये मर्ज़ क्यों लाहक होता है?
0: स्किजोफ्रेनिया होने के बहुत सारी वजूहात हैं,
1: जी
0: मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ों में।
1: जी
0: जैसे कि अगर आपके वालदेन को स्किजोफ्रेनिया हो, तो आपको आने का 40% इम्कान है।
1: जेनेटिक होता है ये।
0: जी, अगर आपके बहन भाई में से किसी को है, तो आपको आने का इम्कान 10% होता है।
1: अच्छा
0: अगर
1: जी
0: आपके कजन्स में से किसी को हो, तो आपको आने का इम्कान 3% होता है।
1: जी अच्छा
0: दूसरी वजह यह हो सकती है कि जहनी तनाव जो मुसलसल हो, जो काबिले बर्दाश्त ना हो, जैसा कि इंतकाल का सदमा, घरेलू तनाज़ियात, घरेलू झगड़े।
1: जी
0: स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ को ही ख़ानदानी मसाइल से गुजरना पड़े, तो इन मरीज़ों में बीमारी की शिद्दत बढ़ सकती है। बचपन की महरूमियाँ, जो बच्चे बचपन में कोई कोई अज़ियतनाक वाक़े का शिकार हो, या
1: अच्छा
0: उन लोग का बचपन महरूमियों से गुजरा हो,
1: जी
0: तो इन बच्चों में दूसरी नफसियाती बीमारियों की तरह स्किजोफ्रेनिया होने का इम्कान भी ज़्यादा है।
1: अच्छा
0: दिमाग में कुछ केमिकल जैसे कि डोपामिन बढ़ जाने की वजह से स्किजोफ्रेनिया होने का इम्कान ज़्यादा है।
1: अच्छा, तो क्या ये काबिले इलाज है ये मर्ज?
0: जी बिल्कुल,
1: क्या इसका इलाज ना किया जाए तो किस तरीके से वो मरीज हम बिहेवियर करेगा?
0: अगर स्किजोफ्रेनिया के मरीज को वक्त पर इलाज ना मिले, तो बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है। इसके लिए हॉस्पिटल में दाखिला कराना पड़ सकता है,
1: अच्छा
0: अगर
1: जी
0: दाखिला हो तो लंबे अरसे तक रहना पड़ सकता है,
1: जी
0: खुदकशी के इम्कानात बढ़ जाते हैं।
1: जी
0: वही अगर मरीज़ को वक्त पर इलाज मिले, तो हालूसिनेशंस, डेल्यूशंस, मनफी अलामत, मुस्बत अलामत में बहुत ज़्यादा कमी होती है,
1: जी
0: सोचने की सलाहियत बेहतर होती है। इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि मरीज़ खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सके और अपना ख्याल खुद रख सके।
1: जी दवा कितने अरसे के लिए लेनी पड़ेगी इस मर्ज में?
0: स्किजोफ्रेनिया एक साइकोटिक बीमारी है,
1: जी
0: जिसमें मरीज़ को अपने बीमार होने का इल्म नहीं रहता। इसलिए इस बीमारी के इलाज में घर वालों को और साथ रहने वालों को
1: जी
0: इस इलाज में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोग का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। घर
1: जी
0: वालों को चाहिए कि मरीज़ को अगर अलामत नज़र आए, तो मरीज़ को वक्त पर साइकियाट्रिस्ट लेकर जाए।
1: जी
0: अगर मरीज़ दवा लेने के लिए तैयार हैं, तो गोलियों के ज़रिए या फिर डिपो इंजेक्शन, जो 4 हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार लगाए जा सकते
1: जी
0: हैं,
1: अच्छा
0: इसके ज़रिए से इलाज हो सकता है।
1: जी
0: अगर मरीज़ दवा लेने से इनकार कर दे, तो अपने साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करें। घर वालों के ऊपर
1: जी
0: लाजिम है
1: जी जी
0: कि
1: जी
0: मरीज़ तक दवा किसी ना किसी तरीके से पहुँचाए।
1: डॉक्टर उस्मा, इसी तरह की और बीमारियों के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? डॉक्टर उस्मा, इस तरह की और बीमारी ओसीडी क्या है और ये बीमारी क्यों हो जाती है, इस बारे में आप हमारे सामाइन को बतलाइए।
0: जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के जहन में कोई ख्याल, वसवसा या शक बार बार आता है, हालांकि मरीज़ इस ख्याल से
1: जी
0: खुद को बचाना चाहता है, इस ख्याल को झटकना चाहता है,
1: जी जी जी
0: लेकिन कई कोशिशों के बाद भी नाकाम रहता है। इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं,
1: जी अच्छा
0: और जो इस ख्याल की वजह से मरीज़ एक काम बार बार दोहराता है, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। मरीज़ को दिन भर ये ख्याल आता है कि उनके हाथ जरासीम या गर्द में आलूदा है,
1: जी
0: जिसको ऑब्सेशन कहते हैं,
1: जी
0: जिसकी वजह से वो बार बार हाथ धोते हैं दिन में बेशुमार दफ़ा, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं।
1: जी अच्छा, ओसीडी किस हद तक शदीद हो सकता है?
0: ओसीडी अगर शदीद हो जाए, तो मरीज़ के लिए बाकायदगी से काम करना, घर वालों के साथ वक्त गुजारना

समय आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनाते हैं गीत सुरीले गाते जा। हाँ, अभी आपने गीत ही सुना, लेकिन आगे और भी बहुत सारे गीत बाकी हैं और कुछ बातें भी हम इसके साथ साथ करेंगे। आज हम बातें करेंगे यानी आजकल के बर्निंग टॉपिक पर, यानी ज़ेर ज़मीन पानी का तहफ़्फ़ुज़। यानी पानी, ज़ेर ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ये बात से हम सब वाकिफ़ हैं। और हम सब सिर्फ अंदाज़ा ही नहीं लगाते, बल्कि हम सब इस बात यानी गवाह हैं, इसका एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ख़ास तौर से इन दिनों में। तो इसी बारे में हम कुछ बातें करते हैं। समय पानी सिर्फ यानी हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी की सांस होती है। जिस दिन ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाएगा, उस दिन इंसान की तरक्की, खूबसूरत इमारतें, जदीद मशीनें और सारी आसाइशें बेमाने हो जाएंगी। आज दुनिया तरक्की कर रही है, इंसान चांद तक पहुंच गया है, नई नई ईजादात हो रही हैं, लेकिन अफसोस, हम अपनी ज़मीन के सबसे कीमती खजाने यानी पानी को बचाने में नाकाम होते जा रहे हैं। ये यानी हम सब देख ही रहे हैं इस बात को, हम सब चाहते हैं, हम सब तकरीर करते हैं, हम सब बोलते हैं कि हम बचा नहीं रहे, हम बचाने में नाकाम हो रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना यानी पानी को बचाने के लिए जो भी तदाबीर ज़रूरी हैं उसे करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज कई इलाकों में लोग पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ ज़मीन के अंदर पानी की सतह इतनी नीचे जा चुकी है कि कुएं खुश्क हो चुके हैं, बोरवेल नाकाम हो रहे हैं और किसान परेशान हैं। जो ज़मीन कभी सरसब्ज थी, आज प्यासी नज़र आती है।

हाँ, अगर हम माजी की तरफ देखें तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया नज़र आती है। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि पहले ज़मीन में पानी बहुत करीब हुआ करता था। चंद फिट खुदाई के बाद ही पानी निकल आता। तालाब भरे रहते, कुएं लबरेज होते थे, दरख्तों की ठंडी छांव होती थी, हवा साफ होती थी, बारिशें वक्त पर होती थी और ज़मीन जिंदगी से भरपूर महसूस होती थी। हम भी देखते हैं कि ज़मीन कब ज़िंदगी से भरपूर महसूस होती है, ये देखने के लिए, यानी ये जो हम शहर की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर, तो हमें कहीं भी यानी ज़मीन ज़िंदगी से भरपूर नज़र नहीं आती है। तो हम ये देखने के लिए कहीं दूर जाते हैं, कहीं अपना वेकेशन स्पेंड करने के लिए गाँव जाते हैं, वहाँ हमें देख कर बहुत अच्छा लगता है। तो पहले सारी ज़मीन ऐसी ही हुआ करती थी क्योंकि उस वक्त इंसान फितरत के करीब था। लोग दरख्त काटने के बजाय लगाते थे, बारिश के पानी को ज़ाया नहीं करते थे, ज़मीन को कंक्रीट से नहीं ढांपा गया जाता था, खेत सांस लेते थे, मिट्टी पानी जज्ब करती थी और बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाकर ज़ेर ज़मीन पानी को भर देता था। लेकिन आज आज क्या हो रहा है? हमने तरक्की के नाम पर दरख्त काट दिए हैं, हर तरफ सीमेंट और कंक्रीट बिछा दी गई है, जंगलात ख़त्म कर दिए गए हैं, दरियाओं को अलविदा कह दिया गया है। हमने पानी को इस तरह इस्तेमाल किया जैसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नतीजा क्या निकला? ज़मीन प्यासी हो गई।

हाँ, तो हम बात कर रहे थे जेर जमीन पानी को बचाने की। आज बारिश का पानी जमीन में जज्ब होने के बजाय सड़कों पर बह जाता है। हम बारिश को सिर्फ चंद लम्हों की खुशी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमें बारिश आने वाले कल की जिंदगी समझना चाहिए, और हकीकत यही है।

सिर्फ बारिश होना काफ़ी नहीं है, अगर हम बारिश के पानी को महफूज ना करें तो लाख बारिशें भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगी। इसलिए आज दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक बारिश के पानी को महफूज करने के लिए ख़ास इकदाम कर रहे हैं। वो लोग घरों, स्कूलों और इमारतों में पिट्स बना रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स का निज़ाम कायम किया जा रहा है। बारिश के पानी को जमा करके ज़मीन के अंदर पहुंचाया जाता है ताकि ज़ेर ज़मीन पानी दोबारा भर सके। वो ममालिक जानते हैं कि मुस्तकबिल की जंगें शायद पानी पर होंगी, इसलिए वो आज से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें भी अब सिर्फ बातों से आगे बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि अमल करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स यानी बारिश के पानी को ज़मीन में जज्ब करने वाले गड़े वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब बारिश होती है तो पानी सड़कों पर बहने के बजाय इन गड़ों में आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जज्ब होता है। इस तरह ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बढ़ती है। अगर हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर मस्जिद, दफ्तर और हर गांव में ऐसे गड़े बनाए जाएं, तो हम हज़ारों लीटर पानी ज़मीन में वापस पहुंचा सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर पानी की अहमियत उस वक्त समझते हैं जब नल खुश्क हो जाता है।

सामाइन, जरा सोचिए कि अगर एक दिन हमारे घरों में पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा? ना पीने का पानी, ना पकाने का, और ना किसी काम के लिए। खेतों के लिए पानी नहीं होगा, ना जानवरों के लिए पानी होगा। जिंदगी जैसे रुक जाएगी। आज किसान परेशान है क्योंकि पानी नीचे जा रहा है, फसलें सूख रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, तालाब खत्म हो रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाली नस्लें शायद सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी ज़मीन के अंदर पानी हुआ करता था। ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। अगर इंसान दरख्त लगाने की सोचे, एक इंसान एक ही दरख्त अगर लगाए, अगर एक घर पानी ज़ाया करना छोड़ दे, अगर एक स्कूल या कॉलेज में कुछ तब्दीलियाँ यानी वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स अगर बनाए जाएं, तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि पानी नेमत है, आदत नहीं। हर बूंद कीमती है। जो पानी आज हम ज़ाया करते हैं, शायद कल किसी प्यासे इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। कुदरत हमेशा इंसान को मौका देती है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर हमने आज भी अपनी गलतियां ना सुधारी तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना होगा।

तो हमें इस बात का एहत करना चाहिए, बल्कि अमल भी करना चाहिए। सिर्फ एहत नहीं कि हम पानी ज़ाया नहीं करेंगे, हम दरख्त लगाएंगे, बारिश के पानी को महफूज करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनवाएंगे। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बनवाएं जगह जगह, दूसरों को भी पानी बचाने की तरगीब देंगे, क्योंकि पानी है तो कल है, पानी है तो ही ज़िंदगी है। अगर पानी नहीं तो ज़िंदगी की ये खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ऊपर वाले ने हमें कुदरत की इन नेमतों की क़द्र करने की तौफीक, यानी तौफीक अता फरमाए, इन सब चीज़ों की क़द्र करने की कुदरत ने हमें यानी अक्ल दी है, तो हम इसका इस्तेमाल करें और इन सब चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएं।

0: गुजरे हुए जमाने को याद न कर कभी खुमार, और जो याद आ ही जाए तो अश्क बहा के भूल जा। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, बार बार पुरानी बातों को दोहराना दिल को मजीद बोझल कर देता है, इसीलिए हाल में जीना सीखें। अगर कोई याद सताए तो इसे दिल में कैद ना रखें, रो लेना, दुआ करना या किसी से बात कर लेना दिल को हल्का कर देता है। चाहे गलती अपनी हो या किसी और की, माफ कर देना दिल के सुकून के लिए जरूरी है। नफरत इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है। सब्र करें और खुद को संभालने का मौका दें। जिंदगी का हुस्न आगे बढ़ने में है, नई उम्मीदें, नए ख्वाब और नई कोशिशें ही इंसान को जिंदा रखती हैं। हर दुख और खुशी उसी की तरफ से है, उस पर यकीन रखने से दिल को इत्मीनान मिलता है। माजी की तलखियों को दिल पर बोझ ना बनाएं, अगर याद आए तो आंसुओं के साथ बहा दें और नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: नदीम अख्तर जैदी से अभी आप पयाम शब सुन रहे थे। इसी के साथ आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम नैरंग अब खत्म होता है। अपने आरजे नूरफ शाह को दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त यानी 9:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: साथ में अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदला

की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज से। ये तो चलिए अब इसके बाद बातें करते हैं गीत मेरे मनमीत में और क्या क्या है खास जो होने वाला है। तो पहले दो गीतों के बारे में आपको बता दूं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज होगी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का होगा। फिल्म का नाम है साजन। और इसके बाद जो गीत आप सुनेंगे उसके बारे में भी आपको बता दूं, जी हाँ, संगीत है एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज होगी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है सूरज और चंदा। तो बैक टू बैक इन दो फिल्मों से आप गीत सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:11:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।
1: की डोरी

गीत, आने वाले दो गीत आपको पता है किसके हैं? जी हाँ, पहला गीत है जावेद अख्तर का लिखा, आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में होगा। संगीत आजी बर्मन का है, फिल्म का नाम है सागर। और इसके बाद आप सुनेंगे मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है आहुति। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, गीत आनंद बख्शी के लिखे हुए थे। इन दो गीतों का आनंद आप लीजिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

11:41 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत, और ये है लता जी की आवाज, साथ होगा किशोर कुमार का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

जी हाँ दोस्तों, ये ना सिर्फ हमारी है, ना सिर्फ आपकी है, ये है हम सब की अपनी आकाशवाणी। और आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर FM गोल्ड, गीत मेरे मनमीत। और आज आपके संग है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे आरडी बर्मन का संगीत पथ, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत है, फिल्म का नाम है पुकार। और इसके बाद जो गीत होगा वो संगीत पथ है राजेश रोशन का, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज होगी, फिल्म का नाम है बातों बातों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर, गीत मेरे मनमीत।

जी हाँ, सुनते कहते बातों बातों में प्यार तो हो ही जाएगा जब ऐसे ऐसे मधुर गीत चलेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर 11:55 और 35 सेकंड हो चुके हैं। अगले गीत के बारे में आपको बता दूं, लता जी की आवाज़ में होगा ये गीत। SD बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है जिद्दी। 1964 में ये फिल्म आई थी। और इसी गीत के साथ अर्पणा चाहेगी इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत। हंसते मुस्कुराते यूं ही हमेशा रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। नमस्कार। लीजिए इस गीत का आनंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फंड जारी करने और उसके उपयोग की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा 3.0 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से SSA, PM पोषण, उल्लास, PM श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वयन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित में भारत में सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने कल नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के

0: वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

खट्टा मीठा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, वरना इस दुनिया में हर किसी को दिल से चाहने वाले कहाँ नसीब होते हैं। कुछ पल जो तुम्हारे साथ गुजारे वही आज भी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे लगते हैं। वक्त गुजर गया, मौसम बदल गए, मगर उस मोहब्बत की खुशबू अब भी दिल में वैसी ही बसी है।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आज मोहब्बत अपने सबसे हसीन अंदाज में एक नई दास्तान लिखने चली है। दो अजनबी दिलों की मुलाकात से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे ख्वाब बनकर आंखों में उतरती गई। इसमें चाहत की मासूमियत है, इंतजार की बेचैनी है और वो एहसास भी, जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि महसूस करना सिखा देता है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज्म सुनी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अमीर मीनाई ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चांद बादलों से निकलकर धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। हर पल चेहरे की एक नई मासूमियत सामने आती है और देखने वाला बस उसी हुस्न में खोता चला जाता है। कुछ खूबसूरती शोर नहीं करती, वो बस आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से।

विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 38 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशी कंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार कभी कम मत करना, चाहे जिंदगी कितने ही इम्तिहान ले ले। कभी रूठ जाना, कभी शिकायत कर लेना, कभी खामोश भी हो जाना, मगर दिल से मोहब्बत कम मत होने देना। रिश्ते वही खूबसूरत लगते हैं जहां नाराजगी भी हो, तकरार भी हो, लेकिन साथ छोड़ देने का ख्याल कभी ना हो। सितम सह लेंगे, दर्द भी सह लेंगे, बस इतना वादा रहे कि प्यार हमेशा पहले जैसा बना रहे।

हाथ की सफाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब भी जिंदगी थका दे हम एक दूसरे का सुकून बने, जब भी आंखें नम हों एक दूसरे की मुस्कान बन जाएं, नाराज़गी आए तो पल भर की हो मगर मोहब्बत उम्र भर की हो, ये वादा रहा।

लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। पहली बार जब उसने मेरा हाथ थामा तो जैसे वक्त एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में हल्की सी हया थी, होठों पर धीमी सी मुस्कान। उस एक पल में जैसे सारी दुनिया बदल गई। दिल की धड़कनों ने कोई नया गीत छेड़ दिया। हवा भी कुछ ज्यादा ही सुरीली लगने लगी। उसके हाथ की गर्माहट अब भी मेरी हथेलियों में बसी है और वो धीमी सी आवाज आज भी कानों में वैसे ही गूंजती है। कुछ लम्हे छोटे होते हैं मगर पूरी जिंदगी बन जाते हैं।

0: कलाकार फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:57 और ठीक 36 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

नीली आंखें फिल्म का गाना आपने सुना। सुमन कल्याणपुर की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ता एम ने। नजर का मिलकर झुक जाना मोहब्बत की निशानी है। दिलों में कुछ अनकहा सा हो तो खामोशी भी कहानी है। लब चाहे कुछ ना कह पाए, आंखें सब कह जाती हैं। एक मासूम सी झिझक में ही चाहत की रवानी है।

अलिफ लैला फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और संगीत दिया श्याम सुंदर ने। क्या रात सुहानी है, चांदनी भी मुस्कुराई है, तेरी यादों की ठंडी हवा दिल को छू कर आई है, खामोश फिजाओं में भी एक मीठी सी कहानी है, लगता है आज फिर मोहब्बत ने दस्तक लगाई है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। आज मेरे मन में जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, हर तरफ एक मीठी सी धुन बिखरी हुई महसूस होती है। बिना किसी वजह के दिल खुश है, हवा भी सुरीली लग रही है और शाम में एक अलग ही अपनापन उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे किसी की याद चुपके से आकर मन के आंगन में बैठ गई हो और उसकी मौजूदगी से हर एहसास मधुर हो उठा हो।

उजाला फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मेरा नादान बालमा जी की बात कहाँ समझ पाता है, मेरी आंखों की खामोशी, दिल की हल्की सी बेचैनी और छुपे हुए एहसास भी उससे अनकहे ही रह जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने मन की बात कह नहीं पाती और वो भोलेपन में मुस्कुराकर हर बात टाल देता है। फिर भी उसकी यही सादगी दिल को अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत शब्दों से नहीं मासूम अदाओं से महसूस होती है।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहानी। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। शायद मोहब्बत जितनी गहरी होती है उसे खो देने का एहसास भी उतना ही गहरा हो जाता है। हर खुशी के साथ एक छोटी सी बेचैनी जुड़ जाती है कि ये खूबसूरत साथ कहीं वक्त की नजर न लग जाए। फिर भी दिल यही चाहता है कि ये रिश्ता यूं ही बना रहे, जैसे किसी मधुर गीत की धुन जो कभी खत्म नहीं होती।

हरियाली और रास्ता फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, मगर हर रास्ता फिर तेरी ही तरफ मुड़ जाता है। जितना तुझे भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही तेरा एहसास और गहरा हो जाता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि खामोशी में और भी करीब आ जाती हैं। दिल समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोहब्बत का असर इतनी आसानी से कहाँ मिटता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मदारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान ही लिया है। तेरी बातों की मिठास, तेरी निगाहों का असर और तेरी मुस्कुराहट का जादू अब दिल से छुपा नहीं है। पहले जो एहसास सिर्फ एक मासूम आकर्षण लगता था, अब समझ आया कि वो धीरे धीरे मोहब्बत बन गया था। तू चुपचाप दिल में उतर गया और मुझे खबर भी ना हुई

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना लता और मुकेश की आवाज में। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 51 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नागिन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग क्लाइंग 5 दिन की यात्रा पर भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग फ्लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

हसीना मान जाएगी फिल्म से आपने गाना सुना, रफ़ी की आवाज़ में, रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा अख्तर रुमानी ने और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। अलग अलग एहसास और जज्बात ही इंसानी जिंदगी में रंग भरते हैं। कभी दिल खुशी से झूम उठता है तो कभी किसी अनकहे दर्द की खामोशी भीतर उतर जाती है। मोहब्बत, इंतजार, उम्मीद, तन्हाई, अपनापन, बिछड़ना, यही सब मिलकर इंसान को सिर्फ जिंदा नहीं रखते बल्कि उसे महसूस करना सिखाते हैं। जिंदगी दरअसल उन लम्हों का नाम है जहां हर एहसास दिल पर कोई नई दास्तान लिख जाता है।

0: दाग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक हल्की सी बेचैनी है, कुछ मीठे ख्वाब हैं और तेरी यादों की धीमी सी धड़कन भी। लब खामोश हैं मगर दिल आज भी तेरे नाम की दास्तान दोहराना चाहता है। अगर तू पास बैठे तो शायद ये दिल अपने सारे राज मुस्कुरा कर खोल दे।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा फिल्म का आपने गाना सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तुम ही तुम मुझसे बातें करती हो तो दिल को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में भी कोई प्यार का इरादा छुपा है। तुम्हारी हर बात में एक अपनापन सा महसूस होता है जैसे तुम सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने एहसास भी मेरे करीब ला रही हो। शायद यही वजह है कि अब तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी बातें दिल को पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं।

मेरे हमसफर फिल्म का गाना आपने सुना। लता और मुकेश की आवाज़ में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मेरे हुजूर फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वो खुशी मिली है मुझको कि दिल खुशी से भर उठा है, बरसों से जिस एहसास का इंतज़ार था जैसे आज वो मेरे दामन में आकर ठहर गया हो। हर तरफ एक नई रोशनी, एक नया सुकून महसूस होता है। जी चाहता है कि ये पल यूं ही ठहर जाएं और इस खुशी की मिठास हमेशा दिल में बसी रहे।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। दिल ने फिर वही पुरानी राहों पर उनकी आहट ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन इंतजार के सिवा कुछ हाथ ना लगा। यादें तो हर बार चली आती हैं बिना बुलाए बिना दस्तक दिए, बस जिनके लिए ये दिल धड़कता है वही जाने क्यों आने में देर कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि उनकी याद ही उनका सबसे सच्चा पैगाम है, जो हर तन्हा पल में साथ निभाने चली आती हैं।

ये रात फिर ना आएगी। रफ़ी और आशा की आवाज़ में आपने गीत सुना। अजीज़ कश्मीरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। बिछड़ना अगर ज़रूरी है तो बिछड़ जाओ।

मगर उम्मीद का एक दिया जलता रहने दो। दिल को ये तसल्ली रहे कि ये मुलाकात आखिरी नहीं है और किसी मोड़ पर फिर से राहें मिलेंगी। कभी किसी सुहानी शाम, किसी मुस्कुराते लम्हे में हम फिर आमने सामने होंगे और अधूरी बातें पूरी कर सकेंगे।

कोहरा फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: वक्त हुआ है 2:56 और ठीक 7 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा

0: की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग ह्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a 4-dimensional concept and instead of focusing

रात के 3:11 और 17 सेकंड हुए हैं। युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही लेकर आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दिल जिसकी आवाज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं और जो हमारे दिल के करीब होते हैं, वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। हम उनकी तस्वीर अपने दिल में बसाए रहते हैं और वो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मिटा दी हमने जमाने से हर एक तस्वीर अपनी, मिटा दी हमने जमाने से हर एक तस्वीर अपनी, पर दिल में सिर्फ एक तेरी ही तस्वीर बाकी है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म माया से अभी आपने ये गीत सुना। मोहब्बत का कोई मौसम कोई मंजिल नहीं होती, मोहब्बत का कोई मौसम कोई मंजिल नहीं होती, ये वो दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता। ना पूछो ये कहाँ कब और कैसे हो जाती है, ये वो सौदा है जो सोच समझ कर नहीं होता।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शक्ति से अभी आपने गीत सुना, जो छुपाए से ना छुपे वो अंदाज है मोहब्बत, जो छुपाए से ना छुपे वो अंदाज है मोहब्बत, जो सरेआम ना हो तो फिर कैसी वो मोहब्बत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म ब्रह्मचारी से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म सिलसिला से।

कभी जो सपना था आज वो पा लिया है, कभी जो सपना था आज वो पा लिया है, तुम्हारी मोहब्बत को दिल में बसा लिया है। अब कोई तमन्ना नहीं इस दिल में बाकी, मैंने जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब सजा लिया है।

0: अभी आपने गीत सुना बिरजू उस्ताद फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए अब अगला गीत सुनते हैं नाइट इन लंदन फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये केवल एक गीत नहीं बल्कि उम्र भर साथ में वफा और कभी ना मिटने वाली यादों का एक बेहद खूबसूरत वादा है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप आए बहार आई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बहारों के सपने से।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम

0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones.

रचना ससदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त तो उठ गए होंगे और अपने कर्म जो आज आपने करने हैं उन पर काम करने लग गए होंगे, और करना भी चाहिए। इस दुनिया में रहना है तो पहचान बनानी होगी, ठहर कर नहीं लहरों से राह चुरा कर चलनी होगी। यहाँ बातों से नहीं कर्मों से सिक्का चलता है, किस्मत के भरोसे नहीं खुद की मेहनत से मुकद्दर बदलता है।

सुबह के 4:11 और 11 सेकंड हुए हैं और सुबह की इस ठंडी ठंडी हवा के साथ अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म हाथी मेरे साथी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इस दुनिया में हमें कई बार ना चाहते हुए भी दुनियादारी निभानी पड़ती है और मुस्कुराकर दुनिया के साथ चलना पड़ता है। आइए सुनते हैं दुनियादारी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, मुस्कुराते हुए दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी, और फूल और कांटे दोनों से ही दोस्ती करना सीखिए, यानी सुख और दुख दोनों में ही आप तालमेल बिठा सकें, ऐसा कुछ कीजिए। आइए सुनते हैं दुनिया झुकती है फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म जागृति से मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें दुख की चिंता ज्यादा सताती है, जबकि ये निश्चित ही है कि दुख है तो सुख भी आएगा ही, और सुख है तो दुख भी आना लाजमी है। आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध को त्याग कर प्यार करना सीखिए, फिर देखिए आपके जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। आइए सुनते हैं फूल और पत्थर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ज़मीर से अभी आपने गीत सुना। मन की शक्ति जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपका मन मज़बूत है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ में फिल्म गुड्डी से ये गीत।

दोस्तों, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी मन की शक्ति को भी हमेशा बरकरार रखिए। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया जिला पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन गया के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल म्यांमार के राष्ट्रपति की म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह वाणिज्यिक पैमाने पर निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को शक्ति प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल www.unclaimedaassessedtsportal.in एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भजन जो गाया है नंदिनी शरण ने।

0: दोस्तों, ये दुनिया रंग बिरंगी है और कौन अपना रंग कब बदल ले कुछ नहीं पता। और इस रंग बिरंगी पतंग यानी दुनिया को उड़ाने वाला कौन है इसका कुछ पता नहीं। आइए सुनते हैं पतंग फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।
1: ये

सुबह के समय पनघट के किनारे पर पानी भरने वाली गोपियों और राधा कृष्ण के नटखट और पवित्र प्रेम के माहौल को आप हूबहू अपनी आंखों के सामने ला सकते हैं इस गीत के माध्यम से जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, मेला फिल्म से मुकेश की आवाज में।

शिकायत नहीं है तुझसे प्रभु, बस एक गुजारिश है। शिकायत नहीं है तुझसे प्रभु, बस एक गुजारिश है कि इस जलते हुए जहां पर रहम की एक बारिश हो। तू देख सके इंसानों के आंसू अपनी आंखों से, बस इतनी सी इस टूटे दिल की ख्वाहिश है। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म बहार से ये गीत।